0: move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: You're listening to City FM 89.
4: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून, तो ले आए मॉसपेल, क्योंकि डे हो या नाइट, मॉसपेल करेगा घंटों फाइट. मॉसपेल, मच्छर आपसे दूर, रहने पर मजबूर.
2: City FM 89
1: on the dial. You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's EDM.
3: City FM 89.
4: This show is brought to you by Jazz.
5: You're listening to City FM 89.
6: Trending today.
7: Earlier this month, OpenAI launched GPT-6 Astra, which it called its most powerful and capable model yet, and the world's best model for a variety of activities, including computer work and coding. Now the lab is expanding the GPT-6 generation with updated versions of smaller Sol and Luna models. Sol is designed for complex tasks like coding, while OpenAI says Luna is more appropriate for clerical work.
4: City FM 89.
8: Step School se foundation ho strong. Step Schools de raha hai modern new age education, which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
9: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वहीं लाइफ है और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा मिनट्स और SMS की शेयरिंग अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से जैज 5G
10: पाकिस्तान भर की तरह कराची में भी शौकत खानम लैब के मयारी टेस्ट और होम सैंपल कलेक्शन की सर्विस मौजूद है मैं चाहूंगी कि आप अपने सारे टेस्ट शौकत खानम लैब से करवाएं और शौकत खानम कराची की तकमील में अपना हिस्सा डालें
11: कॉफी का मूड है तो डिस्काउंट भी होना चाहिए अब इजी पैसा डेबिट कार्ड्स के साथ पे करें और पाएं अप टू 30% ऑफ अपने फेवरेट कॉफी ब्रांड्स पे टिम हॉर्टन्स कॉफी मिस्ट्री थर्ड कल्चर सेकंड कप ग्रीनो एंड मेनी मोर अक्रॉस पाकिस्तान तो सिप करें सेव करें और एंजॉय करें इजी पैसा डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक
12: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून तो ले आए मॉसपेल क्योंकि डे हो या नाइट मॉसपेल करेगा घंटों फाइट मॉसपेल मच्छर आपसे दूर रहने पर मजबूर
6: फॉलो अस एट सिटी एफएम 89 ऑन फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर वीमियो ऑन साउंडक्लाउड
13: यू आर लिसनिंग टू द ब्रेकफास्ट शो विद शर्मीन

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: You're listening to City FM 89.
4: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा मिनट्स और SMS की शेयरिंग अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से जैज 5G
5: द वेट इज फाइनली ओवर नेक्स्ट अप खारिया में हो रही है सेकेंड बैच की इंडक्शन फॉर IASA पार्ट 147 B1 B2 ट्रेनिंग प्रोग्राम
6: अब मिलेगी आपको यूरोपियन स्टैंडर्ड ट्रेनिंग वो भी यहीं पाकिस्तान में इन प्राउड एफिलिएशन विद फ्लाई ऑन एरो इटली अप्रूव्ड बाय इटालियन सिविल एविएशन अथॉरिटी ईएनए
7: अगर आपका ख्वाब है एयरक्राफ्ट के साथ काम करने का और बनना है इंटरनेशनल एविएशन एक्सपर्ट देन दिस इज योर मोमेंट टू शाइन
6: रियल एयरक्राफ्ट एक्सपीरियंस वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग और ग्लोबल करियर एक्सपीरियंस सब कुछ एक ही प्रोग्राम में
7: Last date to apply is 4th October 2026. Abhi apply karein at www.nivt.edu.bk or will be 100% free on scholarship.
8: At Next Step Training Division, we're not just building careers, we're shaping the future.
9: Azra behen, zara baat to suno.
10: Hatu piche, bhago.
11: Ahmed, hatu wahan se.
12: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं घबराए नहीं समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें महकमा सेहत हुकूमत सिंध
13: Hold on! Special delivery coming through!
14: Sharing your thoughts with City FM 89 just got a whole lot easier.
15: We're now live on WhatsApp.
16: You can now send in your messages and voice notes on 03142-898989.
15: It's as easy as 03142-898989.
14: Save our number now and WhatsApp us.
3: You're listening to City FM 89.
17: We're playing your song.
15: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
4: You're listening to City FM 89.
5: Trending today.
6: Earlier this month, OpenAI launched GPT-6 Astra, which it called its most powerful and capable model yet, and the world's best model for a variety of activities, including computer work and coding. Now, the lab is expanding the GPT-6 generation with updated versions of smaller Sol and Luna models. Sol is designed for complex tasks like coding, while OpenAI says Luna is more appropriate for clerical work.
0: City FM 89.
7: Pakistan bhar ki tarah, Karachi mein bhi Shaukat Khanam Lab ke mayari test aur home sample collection ki service maujood hai. Main chahungi ki aap apne sare test Shaukat Khanam Lab se karwaye aur Shaukat Khanam Karachi ki takmeel mein apna hissa dale.
8: जहाँ पाँच दोस्त मिल जाएं, वहीं लाइफ है और ऐसे ही स्पेशल पाँच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस पाँच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा मिनट्स और SMS की शेयरिंग अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से जैज 5G
9: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून तो ले आए मॉसपेल क्योंकि डे हो या नाइट मॉसपेल करेगा घंटों फाइट मॉसपेल मच्छर आपसे दूर रहने पर मजबूर
10: City FM 89 We're playing your song
11: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine

0: City FM 89.
1: This show is brought to you by Jazz.
2: City FM 89.
3: Step School se foundation ho strong. Step Schools de raha hai modern new age education, which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
4: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून, तो ले आए मॉसपेल, क्योंकि डे हो या नाइट मॉसपेल करेगा घंटों फाइट। मॉसपेल, मच्छर आपसे दूर रहने पर मजबूर।
5: कॉफी का मूड है तो डिस्काउंट भी होना चाहिए। अब इजी पैसा डेबिट कार्ड्स के साथ पे करें और पाएं अप टू 30% ऑफ अपने फेवरेट कॉफी ब्रांड्स पे, टिम हॉर्टन्स, कॉफी मिस्ट्री, थर्ड कल्चर, सेकंड कप, ग्रीनो एंड मेनी मोर अक्रॉस पाकिस्तान। तो सिप करें, सेव करें और एंजॉय करें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
6: वी आर
1: सिटी एफएम 89।
7: होल्ड ऑन, स्पेशल डिलीवरी कमिंग थ्रू।
8: Sharing your thoughts with City FM 89 just got a whole lot easier.
6: We're now live on WhatsApp.
1: You can now send in your messages and voice notes on 03142-898989.
6: It's as easy as 03142-898989.
8: Save our number now and WhatsApp us.
9: City FM 89, we're playing your song.
10: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
4: Step School se foundation ho strong. Step Schools de raha hai modern new age education, which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 0311117837.
5: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा मिनट्स और SMS की शेयरिंग अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से जैज 5G
6: पाकिस्तान भर की तरह कराची में भी शौकत खानम लैब के मयारी टेस्ट और होम सैंपल कलेक्शन की सर्विस मौजूद है मैं चाहूंगी कि आप अपने सारे टेस्ट शौकत खानम लैब से करवाएं और शौकत खानम कराची की तकमील में अपना हिस्सा डालें
7: कॉफी का मूड है तो डिस्काउंट भी होना चाहिए अब इजी पैसा डेबिट कार्ड्स के साथ पे करें और पाएं अप टू 30% ऑफ अपने फेवरेट कॉफी ब्रांड्स पे टिम हॉर्टन्स कॉफी मिस्ट्री थर्ड कल्चर सेकंड कप ग्रीनो एंड मेनी मोर अक्रॉस पाकिस्तान तो सिप करें सेव करें और एंजॉय करें इजी पैसा डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक
8: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून तो ले आए मॉसपेल क्योंकि डे हो या नाइट मॉसपेल करेगा घंटों फाइट मॉसपेल मच्छर आपसे दूर रहने पर मजबूर
3: यू आर लिसनिंग टू सिटी FM 89
9: वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग
1: यू आर लिसनिंग टू द ब्रेकफास्ट शो विद शर्मीन

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: It's 5:30 p.m.
4: City FM 89.
5: This show is brought to you by Jazz.
6: You're listening to City FM 89.
7: Pakistan bhar ki tarah, Karachi mein bhi Shaukat Khanam Lab ke mayari test aur home sample collection ki service maujood hai. Main chahungi ki aap apne sare test Shaukat Khanam Lab se karwaye aur Shaukat Khanam Karachi ki takmeel mein apna hissa dalein.
8: Coffee ka mood hai to discount bhi hona chahiye. अब इजी पैसा डेबिट कार्ड्स के साथ पे करें और पाएं अप टू 30% ऑफ अपने फेवरेट कॉफी ब्रांड्स पे टिम हॉर्टन्स कॉफी मिस्ट्री थर्ड कल्चर सेकंड कप ग्रीनो एंड मेनी मोर अक्रॉस पाकिस्तान तो सिप करें सेव करें और एंजॉय करें इजी पैसा डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक
9: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून तो ले आए मॉसपेल क्योंकि डे हो या नाइट मॉसपेल करेगा घंटों फाइट मॉसपेल मच्छर आपसे दूर रहने पर मजबूर
10: The wait is finally over. Next up Kharia mein ho rahi hai second batch ki induction for EASA part 147 B1 B2 training program.
11: Ab milegi aapko European standard training wo bhi yahi Pakistan mein in proud affiliation with Fly on Aero Italy approved by Italian Civil Aviation Authority ANAC.
12: अगर आपका ख्वाब है एयरक्राफ्ट के साथ काम करने का और बनना है इंटरनेशनल एविएशन एक्सपर्ट देन दिस इज योर मोमेंट टू शाइन
11: रियल एयरक्राफ्ट एक्सपीरियंस वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग और ग्लोबल करियर एक्सपीरियंस सब कुछ एक ही प्रोग्राम में
10: लास्ट डेट टू अप्लाई इज 4th October 2026 अभी अप्लाई करें एट www.nivt.edu.pk और वो भी 100% फ्री ऑन स्कॉलरशिप
13: एट नेक्स्ट स्टेप ट्रेनिंग डिवीजन वी आर नॉट जस्ट बिल्डिंग करियर्स वी आर शेपिंग द फ्यूचर
14: अजरा बहन जरा बात तो सुनो
15: हटो पीछे भागो
16: अहमद हटो वहां से
17: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं घबराए नहीं समझदारी से काम ले सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत हुकूमत सिंध
4: City FM 89 We're playing your song
0: You're listening to
18: a

0: Your road rage.
1: City FM 89.
2: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा मिनट्स और SMS की शेयरिंग अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से जैज 5G
1: City FM 89
3: योर ड्राइव अलोंग कंपेनियन
4: Attention, all party starters, weekenders, all-nighters, celebration seekers, beat kickers, thrill seekers, disco lovers, party hoppers, shakers, movers, non-stoppers. It's time to get together and dance, because this is Beat Camp.
5: Every Friday and Saturday, 10 p.m. to midnight, only on City FM 89.
6: City FM 89.
7: You got me going crazy.
1: You're listening to
8: Future Sounds.
1: Future Sounds.
9: Vibe with us, your music.
10: Discovery for the latest jams and hidden gems.

0: City FM 89.
1: जहाँ पाँच दोस्त मिल जाएं, वहीं लाइफ है. और ऐसे ही स्पेशल पाँच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस. पाँच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग. अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से. जैज 5G.
2: City FM 89 is now live on WhatsApp.
3: It's so easy.
1: 0314-289-8989.
3: Save, text, voice note or call to get your song played.
1: And talk to your favorite artists. Only on City FM 89.
4: Don't adjust your dial.
5: This is
6: City FM 89.
7: You're listening to
8: Future Sounds.
9: Future Sounds.
10: Stay fresh, stay lit.
11: New music drops right here.

0: जहां पांच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस, पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G
1: Sharing your thoughts with City FM 89 just got a whole lot easier.
2: We're now live on WhatsApp.
3: You can now send in your messages and voice notes on 03142-898989.
2: It's as easy as 03142-898989.
1: Save our number now and WhatsApp us.
2: You're listening to
4: Future Sounds.
5: Future Sounds.
4: Discover 5 new tracks, fresh drops, and the artists you need on your playlist.
6: Stay ahead of the vibe.

0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: कॉफी का मूड है तो डिस्काउंट भी होना चाहिए. अब इजी पैसा डेबिट कार्ड्स के साथ पे करें और पाए अप टू 30% ऑफ अपने फेवरेट कॉफी ब्रांड्स पे. टिम हॉर्टन्स, कॉफी मिस्ट्री, थर्ड कल्चर, सेकंड कप, ग्रीनो एंड मेनी मोर अक्रॉस पाकिस्तान. तो सिप करें, सेव करें और एंजॉय करें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
1: यू आर लिसनिंग टू
0: नॉन स्टॉप हिट्स.